0: celebrating 36 years of excellence.
1: The Asian Station for Greater London. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 or visit asianfuneralcare.com.
3: Have you spotted anything?
4: Only seagulls. Are you sure this beach is a nature reserve?
3: Well, the sign said nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
4: You sure that sign didn't say naturists?
5: Oi, this is a nudist beach.
4: Ooh. Now, where are my binoculars?
3: Cheryl!
6: Struggling to read in the sun? Get 2-for-1 at Specsavers and make prescription sunglasses your second pair. From £70 with standard single vision lenses to the same prescription. Terms and conditions apply. See in store for details.

0: कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ न बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। Search करें Citizens Advice.
1: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: At Tesco, we know that right now, every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps.

0: Probiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ghi for three generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
2: Mum, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghi.
1: Khanam ghi, the legacy lives on.
0: Khanam ghi, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
3: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com। जिंदगी की स्पीड और गर्मा गर्म चाय की नीड हमेशा रहती है, सो कीप द मोमेंटम गोइंग बिकॉज वी गॉट यू कवर्ड। रॉयल चाय प्रीमियम इंस्टेंट टी, बस सैशे खोलो, गर्म पानी घोलो और एक लंबी चुस्की लेकर बोलो वाह। कड़क मसाला, इलायची और कश्मीरी, चूज योर चाय एंड हैव इट रेडी इन अ मोमेंट। रॉयल चाय, कहीं भी कभी भी।

0: This one from the soundtrack of Dhurandhar 1. Ramba Ho Reimagined. Madhubanti Bagchi joining the legendary Usha Uthup, who made the original Ramba Ho a chartbuster. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे की सुबह शबनम साही के साथ. Happy bank holiday. What are you up to today? Let me know on WhatsApp. 07925-702-72 is the number for that. It's all requests, all 90s on the show. I'm hoping that even if you didn't bother to send a request, you'll find at least half a dozen favorites, at the very least. Don't miss South Hall Travel special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southholtravel.co.uk today. Monday is Coronation Day on Sunrise and our gorgeous Lolo, Karishma Kapoor, wears the Artist of the Crown. Artist of the Week crown. This is going to happen a lot. On the other side, a beautiful song from the 90s. आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके.
1: Shabnam Sahi on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's best dancer is back. Starts this Saturday 9:30 p.m. on Sony TV.
2: अब आमिर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं. हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में. हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ न बने. हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए. हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए. हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन. सर्च करें सिटीजंस एडवाइस.
3: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए.
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए.
3: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए.
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए.
3: और हमारे सोने की वैल्यूएशन.
4: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल. सबसे सोना सड्डा सोना,
4: वसीम ज्वेलर्स.

0: Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today.
1: Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
2: Dad, where have you been?
3: I went to supermarket. Snack shack chahiye si. Big cricket match today on TV and movie afterwards.
2: We had popcorn and crisps, Dad.
3: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with Chatwal milia.
2: Uncle Chatwal?
3: नहीं चटवाल दे नमकीन रेंज प्लेन भुजिया आलू भुजिया खट्टा मीठा नींबू मसाला नवरत्न मिक्स एंड मूंग दाल ओए मैं फुल सिलेक्शन चख ले आया
4: चटवाल्स मजेदार स्पाइसी इंडियन स्नैक्स अ ब्रांड फ्रॉम एसओपी इंटरनेशनल नाउ अवेलेबल एट मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन सुपरमार्केट्स एंजॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.

0: Driving. Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today.
1: All right, let's get one more listen to your trio then. This movie that today's trio is taken from released in the year 2002, I think it was. 2002. Here we go.
2: So much oil? और खाना बहुत स्पाइसी भी लग रहा है. इतना स्पाइसी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता.
3: भाभी, सुना है अमेरिका में आपके डैड का ढाबा है.
2: ढाबा? तुमको पता नहीं होगा क्योंकि तुम तो इस देश से क्या इस शहर से भी बाहर कभी नहीं गए होंगे. सैलेड पास करना. भी आई होप दिस इज मिनरल वाटर.
3: अभी उसे लगता है भाभी को यहाँ का पानी रास नहीं आ रहा है. अमेरिका की पानी की याद आ रही है.
4: अरे भाई, इंसान जहाँ पला बड़ा होता है वहाँ की चीजों की आदत पड़ जाती है और आदत धीरे धीरे ही बदली जाती है.
2: आदत अगर खराब हो तो बदली जाती है.
0: Next. परदेसी मेरे
1: यारा. Have a think about it. Get your answers in before we go ahead and reveal the answer. In the meantime, music from the film Raja Hindustani. It's on the way for this week's Artist of the Week.

0: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Six tasty flavors specific for Pepe's. Do you dare try the extreme or are you a mild person? Pepe's has launched to every store nationwide a new loyalty. Buy six times and get 25% off. T's and C's apply. But wait, they still give away great prizes every week and you will still get 10% off if you've downloaded the Pepe's app and ordered for the very first time. Order on the Pepe's app. It's cheaper and you get so much more when you order your favorite flame grilled chicken. Pepe's, simply Pepe-licious.
1: अब आमिर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ न बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। Search करें Citizens Advice.
0: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड, तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ, वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट हिमालय कार्पेट्स.com।

0: Planning the holiday of a lifetime or visiting loved ones? Call Southall Travel 24/7. Fast, reliable and with a price match guarantee. Book now on 0208 574 8410. Southall Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected.
1: अब आमिर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ न बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
0: अरे मुझे हेल्प

0: very extended version.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिशन। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com.
2: Pepe's Piri Piri presents the icon and living legend Sonu Nigam live in concert. The Revolution Tour comes to London on the 23rd of August at the OVO Arena, Wembley. Get your tickets now to see Sonu for one show only in the UK. Tickets available from AXS and Ticketmaster. Powered by RGB in association with Berico Food Distribution Limited and Dairy Valley. Come see Sonu Nigam live, brought to you by Rock On Music. It's a TCO production. Catering partner Madhus, hospitality partner The Taj Group, radio partner Sunrise Radio.